0: रेडियो साइनो 89.8 MHz तपाईँ हाम्रो अटुट साइनो।
1: साहिनो समय सूचक अहिले दिउँसोको 4 बज्यो 8:04 PM।